आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती है। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन

0: निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 512.8 मीटर म्हणजे 585 किलोहर्ट्स वर आम्ही आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून बोलत आहोत। सकाळची 6:05 झाली आहेत। श्रोतेहो आता ऐकूया अर्चना या कार्यक्रमात भक्ती संगीत।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के

0: सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: एक क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ता

0: के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: काम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है।
1: तीसरी जगह खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले,
0: गूंज उठे हर दिशा

0: आगे क्या करना है। बेटा फौरन चला गया। बुजुर्ग इंसान की लाश के पास बैठकर आंसू बहाने लगी कि न जाने इन औलादों पर क्या गुजर रही होगी। इधर डॉक्टर साहब के यहाँ पार्टी खत्म होने के बाद गार्ड ने गेट पर ताला लगाकर चाबी को मुकर्रा जगह पर लगाकर चला गया। सभी लोग घर में मसरूर और मस्ती के आलम में अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह डॉक्टर साहब ने देखा कि देर तक गेट पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने कहा, आज अब्बा जी अभी तक उठे नहीं हैं। सुबह फजीर की नमाज के लिए अब्बा जी गेट खोलकर जाया करते थे। उन लोगों ने अब्बा जी का कमरा देखा तो अब्बा जी कमरे में नहीं थे। उनका रात का खाना भी उसी तरह ढका हुआ था, दवाइयां भी उसी तरह रखी हुई थीं। वो दोनों घबरा गए। एक आवाज में दोनों ने कहा कि अब्बा जी रात घर नहीं आए थे। उन लोगों ने गार्ड को फोन किया। उसने भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। अपने दोस्तों को फोन लगाकर पूछा। सबका जवाब ना में था। गाड़ी निकाल कर दोनों ने नजदीकी दवाखानों में तलाशना शुरू किया। उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इन लोगों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में गुमशदगी की रिपोर्ट लिखाई। तभी घर वापसी पर मस्जिद के ऐलान से सुनाई पड़ा कि मस्जिद में एक बुजुर्ग की मैयत आई है। अगर किसी घर के बुजुर्ग गुमशदा हैं तो वो यहाँ आकर मैयत को देख लें। दोनों के मुंह से जोर से चीख निकल गई। अल्लाह न करे ऐसा हो। वो मस्जिद के अंदर गए, मैयत को देख कर चीख पड़े, अब्बा जी की मैयत पड़ी थी। पूछने पर एक बूढ़ी औरत ने बताया कि कल रात मेरे घर के सामने इन्हें एक कार वाले ने टक्कर मारी थी। इनके सर पर बहुत खून निकल रहा था। हम माँ बेटे ऑटो रिक्शा से नजदीकी दवाखाने में लेकर गए थे। वहाँ लगा बहुत सारे डॉक्टर्स थे, सभी की पार्टी चल रही थी। किसी ने इन्हें नहीं देखा। सभी ने कहा सरकारी अस्पताल जाओ। वहाँ के गार्ड ने भी अपनी मालकिन को बताया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि आज मरीज नहीं देखेंगे, सरकारी अस्पताल ले जाओ। बोलो हम लोग सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कोशिश की मगर बुजुर्ग इंसान थे, खूब ज्यादा खून बहने की वजह कर नहीं बचा पाए। तब हम लोग यहाँ मस्जिद के इमाम साहब को बताकर यहाँ लेकर आ गए। आप लोग कौन हैं? मैडम आप लोग इन्हें जानते हैं क्या? डॉक्टर इन्हें घर ले चलें। हाँ हम लोग इन्हें जानते हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं। बस खुद को नहीं जान सके कि मैं कौन हूँ, न डॉक्टर न इंसान।
1: अफसाने का उन्वान था मैं कौन हूँ। आपसे मुखातिब थी डॉक्टर शगुफ्ता आरिफ हुसैन। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं, हुकूमत हिंद के जरिए अकलियतों की फलाह व बहबूदगी के लिए वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के सिलसिले में तालीम की स्कीम की मालूमात। पेश कर रहे हैं जनाब जफर अहमद खान। समाप्त।
2: गवर्नमेंट ने ऐसे ही वो बच्चे जो पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप दी जाती है। ये फेलोशिप यूजीसी के तहत ये स्कीम दी जाती है, जिसके नोडल एजेंसी जो है यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इस स्कॉलरशिप के अंदर तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये साल के स्टूडेंट को, जो वो पीएचडी या एमफिल का कोर्स कर रहा है, उसमें उसके मुताबिक वो स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें भी बच्चे की या उसके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पिछली क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर में उसके 50% से ज़्यादा नंबरात होने चाहिए।
1: आप सुन रहे थे हुकूमत हिंद के जरिए अकलियतों की फलाह व बहबूदगी के लिए वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के सिलसिले में तालीम स्कीम की मालूमात। पेश कर रहे थे जनाब जफर अहमद खान। इख्तिताम से कब्ल सुनवाते हैं ये गीत। आवाजें हैं शब्बीर कुमार और साथियों की, और तहरीर किया है आनंद बख्शी ने।

आप सुन रहे थे गीत, आवाजें थी शब्बीर कुमार और साथियों की, और तहरीर किया था आनंद बख्शी ने। ये प्रोग्राम की पेशकश थी जनाब आशीष सातपुते साहब की, और पेशकर्दा थी नाहिद खान। इसी के साथ आज का आबशार यहीं ख़त्म होता है। नाहिद खान को इजाज़त दें, सुबह बखैर।

वकालत करने में साहब के साथ का झगड़ा बाधक बनता था। पोरबंदर में एडमिनिस्ट्रेशन नाबालिगी शासन था, वहां राणा साहब के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। मेरे लोगों से लगान उचित से अधिक वसूल किया जाता था। इसके सिलसिले में भी मुझे वहां एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना था। मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर यद्यपि हिंदुस्तानी है, तथापि उनका रोब दाब तो साहब से भी अधिक है। वे होशियार थे, पर उनकी होशियारी का लाभ जनता को अधिक मिला हो यह मैं देख ना सका। राणा साहब को थोड़ी सत्ता मिली, कहना होगा कि मेरे लोगों को तो कुछ भी ना मिला। उनके मामले की पूरी जांच हुई हो ऐसा भी मैंने अनुभव नहीं किया, इसलिए यहां भी मैं थोड़ा निराश ही हुआ। मैंने अनुभव किया कि न्याय नहीं मिला। न्याय पाने के लिए मेरे पास कोई साधन ना था। बहुत करे तो बड़े साहब के सामने अपील की जा सकती थी, वे राय देंगे, हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। ऐसे फैसलों के पीछे कानून कायदा हो तब तो कुछ आशा भी की जा सकती है, पर यहां तो साहब की मर्जी ही कानून है। मैं उकलाया। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर की एक मेमन फर्म का संदेश आया। दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है, हमारी फर्म बड़ी है, वहां हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है, 40,000 पाउंड का दावा है। मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील बारिस्टर हैं। अगर आप अपने भाई को भेजें तो वे हमारी मदद करें और उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। वे हमारा मामला हमारे वकील को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके सिवा वे नया देश देखेंगे और कई नए लोगों से उनकी जान पहचान होगी। भाई ने मुझसे चर्चा की। मैं इस सब का अर्थ समझ न सका। मैं यह जान न सका कि मुझे सिर्फ वकील को समझाने का ही काम करना पड़ेगा या अदालत में भी जाना होगा। फिर भी मैं ललचाया। दादा अब्दुल्ला के साझी मरहूम सेठ अब्दुल करीम जवेरी से भाई ने मेरी मुलाकात कराई। सेठ ने कहा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बड़े बड़े साहबों से हमारी दोस्ती है, उनसे आपकी जान पहचान होगी, आप हमारी दुकान में भी मदद कर सकेंगे। हमारे यहां अंग्रेजी पत्र व्यवहार बहुत होता है, आप उसमें भी मदद कर सकेंगे। आप हमारे बंगले में ही रहेंगे, इससे आप पर खर्च का बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा, आप मेरी सेवाएं कितने समय के लिए चाहते हैं, आप मुझे वेतन क्या देंगे? हमें एक साल से अधिक आपकी जरूरत नहीं रहेगी, आपको पहले दर्जे का मार्ग व्यय देंगे और निवास तथा भोजन खर्च के अलावा 105 पौंड देंगे। इसे वकालत नहीं कह सकते, यह नौकरी थी, पर मुझे तो जैसे भी बने हिंदुस्तान छोड़ना था। नया देश देखने को मिलेगा और अनुभव प्राप्त होगा सो अलग। भाई को 105 पौंड भेजूंगा।

तो घर का खर्च चलाने में कुछ मदद होगी। यह सोचकर मैंने वेतन के बारे में बिना कुछ झिकझिक किए ही सेठ अब्दुल करीम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। नेटाल पहुंचा। विलायत जाते समय वियोग के विचार से जो दुख हुआ वह दक्षिण अफ्रीका जाते समय ना हुआ। माता तो चल ही बसी थी, मैंने दुनिया का और यात्रा का अनुभव प्राप्त किया था। राजकोट और बंबई के बीच तो आना जाना बना ही रहता था, इसलिए इस बार वियोग केवल पत्नी का ही दुखदायी था। विलायत से आने के बाद एक और बालक की प्राप्ति हुई थी। हमारे बीच के प्रेम में अभी विषय भोग का प्रभाव तो था ही, फिर भी उसमें निर्मलता आने लगी थी। मेरे विलायत से लौटने के बाद हम दोनों बहुत कम साथ रह पाए थे और शिक्षक की तरह मेरी योग्यता जो भी रही हो, परंतु मैं पत्नी का शिक्षक बना था इसलिए, और पत्नी में जो कई सुधार मैंने कराए थे उन्हें निभाने के लिए भी हम दोनों साथ रहने की आवश्यकता अनुभव करते थे। पर अफ्रीका मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, उसने वियोग को साहे बना दिया। एक साल के बाद तो हम फिर मिलेंगे ही ना, पत्नी को यह कहकर और सांत्वना देकर मैंने राजकोट छोड़ा और मैं बंबई पहुंचा। मुझे दादा अब्दुल्ला के बंबई वाले एजेंट के जरिए टिकट खरीदना था, पर स्टीमर में कोई कैबिन खाली न थी। हालत यह थी कि अगर इस मौके को चूक जाता तो मुझे एक महीने तक बंबई की हवा खानी पड़ती। एजेंट ने कहा, हमने कोशिश तो बहुत की पर हमें टिकट नहीं मिल सका, आप डेक में जाएं तो जा सकते हैं, भोजन की व्यवस्था सलून में हो सकेगी। वह जमाना मेरे लिए पहले दर्जे की यात्रा का था, क्या बारिस्टर डेक का यात्री बनकर जाए? मैंने डेक में जाने से इनकार कर दिया। मुझे एजेंट पर शक हुआ, मैं यह मान न सका कि पहले दर्जे का टिकट मिल ही नहीं सकता। एजेंट की अनुमति लेकर मैंने ही टिकट प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मैं स्टीमर पर पहुंचा, बड़े अधिकारी से मिला। पूछताछ करने पर उसने सरल भाव से उत्तर दिया, हमारे यहां इतनी भीड़ शायद ही कभी होगी, पर इस स्टीमर से मोजाम्बिक के गवर्नर जनरल जा रहे हैं, इससे सारी जगहें भर गई हैं, तो आप मेरे लिए किसी तरह जगह निकाल ही नहीं सकते? अफसर ने मेरी तरफ देखा, फिर वह हंसा और बोला, एक उपाय है, मेरे कैबिन में एक बर्थ खाली रहती है, उसमें हम यात्री को नहीं लेते, पर आपको मैं वह जगह देने के लिए तैयार हूं। मैं खुश हुआ, अफसर का आभार माना, सेठ से बात करके टिकट कटाया और 1893 के अप्रैल महीने में उमंगों से भरा मैं दक्षिण अफ्रीका में अपना भाग्य आजमाने के लिए रवाना हो गया। पहला बंदर लामू पड़ता है, वहां पहुंचने में करीब 13 दिन लगे। रास्ते में कप्तान से अच्छी मित्रता हो गई। कप्तान को शतरंज खेलने का शौक था, पर वह अभी नौसिखिया ही था। उसे अपने से कमजोर खेलने वाले साथी की जरूरत थी, इसलिए उसने मुझे खेलने के लिए न्योता दिया। मैंने शतरंज का खेल कभी देखा न था, उसके विषय में सुना काफी था। खेलने वाले कहते थे कि इस खेल में बुद्धि का खासा उपयोग होता है। कप्तान ने कहा कि वह खुद मुझे सिखाएगा। मैं उसे अच्छा शिष्य मिला क्योंकि मुझमें धैर्य था। मैं हारता ही रहता था, इससे कप्तान का सिखाने का उत्साह बढ़ता जाता था। मुझे शतरंज का खेल पसंद पड़ा, पर मेरा यह शौक कभी जहाज के नीचे ना उतरा। उसमें मेरी गति राजा रानी आदि की चाल जान लेने से अधिक ना बढ़ सकी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पठन।

0: गुप्ता। और इस विषय पर अगर आपको कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712071712। डॉक्टर सुनील गुप्ता, कार्यक्रमामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे।
1: धन्यवाद मॅडम, थँक्यू।
0: डॉक्टर, डायबिटीसमध्ये खूप वेळा अनेक म्हणजे कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात जेव्हा डायबिटीस असतो, तर अशा वेळेला आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे, कारण की वेगवेगळ्या ऑर्गन्सवर परिणाम होत असतो, तर आपण
1: वन्स अपॉन ए टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, MBBS कर रहे थे, MD कर रहे थे
0: जी,
1: तब उस समय ऐसा बोला जाता था कि इफ़ यू नो सिफिलिस, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि जिससे पूरे ऑर्गन हमारे ख़राब होते हैं एक एक करके।
0: जी जी,
1: एक ज़माने में बोला जाता था इफ़ यू नो सिफिलिस यू नो मेडिसिन, यानी पूरी मेडिसिन आपको आ जाएगी।
0: अच्छा।
1: परंतु जब से डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च और इसको अंडरस्टैंडिंग शुरुआत हुई है, तो पिछले ऑलमोस्ट 25-30 सालों से ये बोला जाता है इफ़ यू नो डायबिटीज़ यू नो द मेडिसिन। सो डायबिटीज़ बेसिकली इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ दीज पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स, उनको कोई लक्षण है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: अब लक्षण नहीं है, देखिए आपको बुखार आएगा तो आप उसका केयर करोगे, अरे मेरे को बुखार आ गया। आपको हाथ पर दर्द देगा तो आप जाओगे डॉक्टर के पास करोगे। आपको यदि आंखों में कम दिख रहा है तो आप जाओगे कि चलो भाई मेरे को कल तक अच्छा दिख रहा था, आंख में थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट यदि आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण है ही नहीं, और बाय दैट टाइम इसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण आते हैं, चाहे वो किडनी खराब होने के हों, चाहे आँख खराब होने के हों, चाहे रक्तवाहिनियों के ब्लॉकेज, चाहे ब्रेन या हार्ट या पैर की रक्तवाहिनी, ये सभी जो ब्लॉकेज है बाय दैट टाइम इट इज ऑलमोस्ट 70-80% कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी है। तब आपको मालूम पड़ता है कि अरे आपको तो मालूम ही नहीं था और ये हो गया। तो यह जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इसीलिए हमारे हर मधुमेही को आज जागरूक होना पड़ेगा कि आप लक्षणों की रास्ता देखिए मत। जब भी मेरे को तकलीफ ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? मेरे को यदि 400 शुगर पर भी इफ आई एम ऑल फीलिंग गुड, ये तो डॉक्टर
0: तो
1: मैं दवाई लूं नहीं लूं उससे, एक तो आप सबसे पहले जांच नहीं करवाते हो कि आपको है कि नहीं है। गलत आपको, चलो अनफॉर्चुनेटली जो भी निकल भी गया तो निकलने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं फिर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं 4-4 बार इंसुलिन लेते हैं फिर भी शुगर कभी चेक नहीं करते हैं। अरे यार, छोटी छोटी सी बात है, आप छोटी सी आप 2-व्हीलर पर भी या कार में भी आप जाकर बैठते हो तो एक बार ब्रेक दबा के देख ले वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सीलेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, धूल तो नहीं लगी हुई है, वो सब यानी एक निर्जीव चीज़ के लिए आप उतने केयरफुल हो कि देखते हो उसको, पर अपने अंदर में इतनी सारी चीज़ चल रही है उसके तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो एक बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट और मैसेज हमें आज ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से देना चाहिए कि हर मधुमेही को खुद की मधुमेह की ओनरशिप लेनी पड़ेगी।
0: अच्छा, बहुत बड़ा शब्द है ये,
1: बहुत बहुत बड़ा शब्द है मैडम, खुद के लिए। देखिए
0: डॉक्टर, इसके बारे में हम बात करते हैं, कॉल पहले लेते हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, हाँ नमस्कार,
2: गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर,
1: गुड मॉर्निंग जी, बोलिए।
2: सर मला 10 वर्ष झाले डायबिटीज आहे, सध्या माझं वय 37 वर्ष आहे आणि गेले 2 वर्षापासून मी इन्सुलिन थेरपीवर आहे, नो रॅपिड आणि नो रेग्युलर इन्सुलिन मला सुरू आहे दिवसातून 3 आणि 1। तर सर यामध्ये काय होतं, माझं पोस्ट मील जे आहे ब्रेकफास्ट नंतर, जेवणानंतर, रात्री डिनरनंतर, ते ऑलमोस्ट सगळं नॉर्मल येतं, बट फास्टिंग हे नेहमी वाढून येते, जवळपास 150-180 या दरम्यान ती राहते। आता सध्या नोबेग्लारचे 18 युनिट सुरू आहेत।
1: बर, तर आपल्याला
2: यामध्ये सर यामध्ये इन्सुलिन बदलायची गरज असते की मग हे डोजेसच वाढत जातील असे?
1: नाही, एक ते इम्पॉर्टंट असे आहे की तो आपल्याला खूप कमी वयापासून, म्हणजे 27 वर्षाच्या वयापासून आपल्याला डायबिटीस झालेला आहे आणि म्हणून तो 10 वर्षातच तुम्हाला इन्सुलिन पण लागलेला आहे। तुम्ही 4 वेळा इन्सुलिन घेता, विच इज अ व्हेरी गुड इन्सुलिन, क्वालिटी ऑफ इन्सुलिन इज ऑल्सो गुड, आणि आपले पोस्ट मिल सगळे व्यवस्थित येत आहेत। तर आता फक्त फास्टिंगचा एक टार्गेट तुम्हाला जर अचीव करायचं असेल तर त्याच्यात 2 ऑप्शन आहे। 1 इज दॅट यू कॅन पुट CGM, कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, त्याच्यात प्रत्येक 5-10 मिनिटा 15 मिनिटाची शुगर 15 दिवस किंवा 14 दिवस मॉनिटर होते, वेगवेगळ्या प्रकारचे येतात आणि दे आर व्हेरी गुड CGMs, त्यांनी आपल्याला हे करते। आता फास्टिंग शुगर 2 कारणामुळे वाढते, पहिला की रात्री जर आपली रात्री 2 ते 3 वाजता प्रॅक्टिकली एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे इन्क्लुडिंग रूपा मॅडम, इन्क्लुडिंग मी, इन्क्लुडिंग अर्चापुरे मॅडम, सगळ्यांच्या शुगर 24

0: जिससे लीवर भी डैमेज होता है लॉन्ग टर्म में। तो सर इससे मतलब डायबिटीज का कोई होने का चांस मतलब कितना है, मतलब कितना रिस्क फैक्टर है ये? थैंक यू सर।
1: अल्कोहल से दो चीज़ें होती है जो बहुत कॉमनली होती है, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डायबिटीज़ में यदि आपने शराब नहीं भी लिए तो भी ऑलमोस्ट 40-50% चांसेस है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को लीवर की बीमारी होती है, जिसको MASLD बोलते हैं, दी मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड स्टीटियोहिपेटाइटिस, यानी फैटी लीवर जो बोलते हैं ना, अपन सोनोग्राफी कराने जाते हैं उसमें फैटी
2: जी जी
1: लीवर में फैट आ गया, तो वहाँ वो एक फैटी लीवर डिसीज़ बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में। तो डायबिटीज़ यदि आप शराब नहीं भी लेते हो तो आपको ये होने की चांसेस ऑलमोस्ट 40-45-50% रहती है टाइप 2 डायबिटीज़ में।
2: जी।
1: ओबेसिटी में भी होती है। तो जितने ऐसे लोगों को यदि उन्होंने शराब और लेंगे तो नेचुरली लीवर ऑलरेडी ख़राब हो रहा है, उसमें और दुबले पे दो असाड़ वाली मैडम बात होगी और वह और ज़्यादा ख़राब होने की संभावना
2: अच्छा
1: रहेगी। ये हो गया लीवर की बात। सेकेंड, अल्कोहल से पेनक्रियाटाइटिस होता है। अल्कोहल इंड्यूस्ड पेनक्रियाटाइटिस डेंजरस, और
2: जी।
1: वो पेनक्रियाटाइटिस में आपके बीटा सेल भी डैमेज होते हैं। आपका जो पेनक्रियाज ऑर्गन है उसमें उसमें दोनों एंडोक्रीन सेल्स होते हैं, एक्सोक्रीन सेल्स होते हैं। एंडोक्रीन सेल्स में बीटा सेल्स भी आते हैं, अल्फा सेल्स भी आते हैं। जब आपका पेनक्रियाज खराब होता है तो आपके सभी सेल्स एक एक करके डेड होते हैं। तो जिनको भी पहले कभी पेनक्रियाटाइटिस का अटैक आया, चाहे वो 10 साल 15 साल की उम्र में आया हो, चाहे वो 50 साल की उम्र में आया हो, उन्हें आगे जाके पेनक्रियाटाइटिस वालों को डायबिटीज होने की भी संभावना रहती है। तो अल्कोहल का दूसरा डेंजरस पार्ट ये है। तीसरा, अल्कोहल इज ए हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट।
2: अच्छा
1: अल्कोहल से लो शुगर की रिस्क बढ़ जाती है। आपने रोज जो दवाइयाँ ले रहे हैं, कभी आप अल्कोहल नहीं लेते पर शनिवार को आपने अल्कोहल का सेवन करके आप सो गए, आपको लो शुगर की रिस्क बढ़ जाएगी।
2: अच्छा
1: तो
2: अच्छा
1: हाइपोग्लाइसीमिया भी ये प्रेसिपिटेट करता है। चौथा, आपको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के बारे में हमेशा बात करते हैं कि नसों के ऊपर असर होता है, डायबिटीज़ में भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है,
2: जी।
1: सॉरी अल्कोहल में भी डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी, अल्कोहल में भी न्यूरोपैथी होती है। तो अल्कोहल की न्यूरोपैथी और डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी करके वो न्यूरोपैथी का भी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रेन रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड,
2: ऐसे
1: मल्टीपल
2: अलग
1: थिंग्स
2: अलग
1: कैन, अलग
2: कॉम्प्लिकेशंस
1: अलग
2: होते हैं
1: कॉम्प्लिकेशंस
2: जी।
1: अल्कोहल के कारण हो सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा सजेशन हर मधुमेही के लिए है कि यदि आपको मधुमेह है तो आपने अल्कोहल का सेवन
2: बंद
1: नहीं
2: करना
1: करना
2: चाहिए
1: चाहिए।
2: जी।
1: ले रहे हैं तो बंद करो, नहीं ले रहे हैं तो चालू मत करो।
2: जी
1: जी
2: डॉक्टर, एक कॉल लेते हैं। हेलो।
3: हाँ हेलो मैडम, मैं रानू बोल रही हूँ शंकरपुर से। हाँ
2: हाँ बोलिए रानू जी।
3: जी हाँ नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे थायराइड और शुगर दोनों हैं, मतलब मेरे अगर टोटल जो है वो जो एचबीसी वो 6.7 ही आता, जबकि टेबलेट भी ले रही हूँ और थायराइड की गोलियां भी ले रही हूँ,
1: जी
3: और बढ़ नहीं रहा है लेकिन कम भी नहीं हो रहा है,
1: सिक्स
3: इसलिए मैं
1: पॉइंट
3: सेपरेट
1: हाँ
3: पूछे।
1: 7 के अंदर अच्छा है, 6.5 के अंदर हम लोग एक्सीलेंट बोलते हैं ना, A++ मार्क्स देते हैं उनको। तो उस हिसाब से यदि 6.5 के अंदर आ जाए तो और अच्छा है। कुछ कुछ ऐसे पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया पे अभी हम लोगों ने बात करी, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया पे बात करी, तो आप अपने शुगर्स थोड़े से चेक करें। कई बार आपने ज़िंदगी में कभी खाना खाने के बाद रात को टेस्ट किया ही नहीं होगा, परंतु वहाँ का कई बार 200 के ऊपर रहता होगा बीच बीच में, इसीलिए आपका एवरेज शुगर थोड़ा सा हायर साइड लग रहा है। परंतु यह भी कुछ ख़राब नहीं है, पर कोशिश करें यदि आप सचमुच स्ट्राइव कर रहे हैं, इफ यू आर स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव लेस देन 6.5, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट।
2: जी श्रोताओं, आप सुन रहे थे डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है मधुमेह, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर सुनील गुप्ता। आपको अगर कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712071712। डॉक्टर एक कॉल है, हम पहले
1: जी
2: कॉल लेते हैं। हेलो हेलो।
4: हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मी 6 महिने आधी जेव्हा माझं ते H1C1 3 महिन्याची रिपोर्ट जेव्हा चेक केली होती तेव्हा माझं 7.1 आलं होतं सर।
1: बरं,
4: आणि मी आता लेटेस्ट मध्ये चेक केलं तर फास्टिंग सर 115 होतं आणि जेवण झाल्यानंतरची टेस्ट केली 1.5 घंट्यानंतरची तर सर ती 146 आली होती, 146।
1: HbA1c किती आताचा?
4: ते 6 महिने आधी सर 7.1 आलं होतं,
1: आता नाही केलं,
4: आता एवढ्यात नाही केलं
1: हा। ते मला वाटतं एकदा HbA1c करा, पहिले लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करा। इफ जर कोणती औषधं चालू नसेल तर लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशनवर आपला पहिले HbA1c करून पहा, जर ते 6.5 पेक्षा कमी असेल तर बेस्ट आहे।

0: आणि नसेल
1: आता
0: तर मग औषधं एकदा डॉक्टरांच्या डॉक्टरांना भेटून चालू करून घ्याल.
1: आता तसं सर पर्सनली आम्ही डॉक्टरकडे गेलो नाही. जीवनशैली जी आहे सर, जी रुटीन आहे आपली डेलीची, ते तशीच आहे. त्यामध्ये काही सुद्धा चेंजेस नाही.
0: मी आता पहा, रूपा मॅडमनी किती छान सुरुवात केली की कॉम्प्लिकेशन वर बोलू सर आज आपण, आणि आपण इतकं बोललो की 90% लोकांना कोणत्या प्रकारची काही लक्षण नाही राहत. तर जेव्हा आपल्याला डायबिटीस 7.1 माहीत पडलं तर आपल्याला माहीत पाहिजे की आजच्या दिवस आपली किडनी कशी आहे, हार्ट कसं आहे, लिव्हर कसं आहे, कोलेस्ट्रॉल कसं आहे, थायरॉईड तर नाही आहे, पायाच्या नसावर परिणाम तर नाही आहे. हे सगळं एकदा करून घेऊन घेतलेलं बरं फ्रॉम युअर गुड डॉक्टर, जे काही तुमच्या जवळपास डॉक्टर असतील. आणि देन यू हॅव अ बेस कि जिस दिन मेरे को डायबिटीज था उस दिन मेरा ऐसा सिचुएशन था, अब मेरे को इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो सिर्फ हमने ग्लूकोसेंट्रिक नहीं हो सकते. आई कैंट जस्ट सी शुगर, आई हैव टू सी अदर थिंग्स ऑल्सो. तो तैसे तुम्ही काळजी होलिस्टिक अप्रोच म्हणतो, वी कॉल इट एज होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक इज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लिवर, रेटिना, थायरॉइड, एवरीथिंग हॅज टू बी सीन प्रॉपरली बिफोर यू स्टार्ट. इट इज डायबिटीज जस्ट नॉट मीन ओनली शुगर. शुगर पाहून घेतला माझ्याकडे ग्लुकोमीटर आहे म्हणून मी डॉक्टरांकडे जात नाही, हे चुकीचं कॉन्सेप्ट आहे.
2: जी डॉक्टर, अभी ये ऐसे दिन हैं कि छुट्टियां लगी हैं और सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तो इस समय में अगर कोई पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो
0: पेशेंट नहीं है,
2: तो उन्होंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: हाँ, तो हमारे मधुमेहियों को जिसको ट्रैवल डे गाइडलाइंस बोलते हैं ना, ट्रैवल डे गाइडलाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रैवल इज वेरी अगेन बिग टर्मिनोलॉजी. ट्रैवल में आप कार से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, आप डोमेस्टिक जा रहे हैं, आप इंटरनेशनल जा रहे हैं, हर जगह. और आप एक पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, आप पानी वाले एरिया में जा रहे हैं, या आप एक सीमेंटेड जगह देखने के लिए जा रहे हैं जो तो आपको इस तरह से अपने डिसीजंस लेने पड़े हैं. पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल ट्रैवल के आप ध्यान रखिए. जब भी आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो अपनी एक फर्स्ट एड किट हमेशा अपने पास में रखें. फर्स्ट एड किट में आपकी कॉमन तो है ही, जो आप लोग रखते हैं कि बीटाडिन रख लिया, बैंडेज रख लिया, ये सब चीज़ें कॉमन है, पैरासिटामोल की गोली रख ली. परंतु डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, जो भी आप हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो दवाइयों का डोज बराबर रखें. अपनी फाइल की एक कॉपी अपने साथ रखें, नहीं हो सके तो सॉफ्ट कॉपी उसकी अपने साथ में रखें. साथ में आप दवाइयों के डोज, सपोज आपने आज ट्राई किया है कि मैं आज अभी मैं चारधाम यात्रा पिछले हफ्ते निकला था और हम लोग दो यात्रा कर पाए, परंतु उसके बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ आई तो हमें
2: वापस
0: आना पड़ा दो के बाद. परंतु उसमें यह रियलाइज हुआ कि वहां पर बहुत सारी जगह दवाइयां ही नहीं है, दवाइयों की दुकानें ही नहीं है. कि एक व्यक्ति को कुछ चेस्ट पेन हो रहा था तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आप अपना ईसीजी निकाल लिए, तो वहां पूछा गया कि ईसीजी की मशीन भी नहीं है. तो इस तरह से हमको वहां बहुत ही लेस रिसोर्सफुल सिचुएशन रहती हैं, और वहां पर हमको कॉम्प्रोमाइज स्टेट में अपना पूरा अरेंजमेंट करके रखना चाहिए. तो आपकी दवाइयां, एक आप पानी आ रहा है, बरसात, रोड बंद हो गए, अब आप 3 दिन फंसे या 4 दिन फंसे. कोरोना में लोगों ने बहुत रियलाइज किया कि वो गए थे 2 महीने के लिए, पर उनको 2 महीने एक्स्ट्रा, 1 महीना एक्स्ट्रा रहना पड़ा, वो 1 महीने की दवाइयां ही नहीं थी.
2: अच्छा।
0: तो हमेशा जाते समय अपने पास जितने दिन का प्लान कर रहे हैं उससे डबल दवाइयां लेके जाएं. लो ग्लूकोमीटर अपने साथ में रखें. पहनते समय अपने जो शूज है पैरों की हिफाजत के लिए स्पोर्ट्स शूज रखें, कॉटन के सॉक्स रखें. जाते समय हमेशा खाली पेट ना रहें, 3.5 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें. नहीं, मैं ये तो यात्रा खाली पेट ही करूंगा, उपवास करके करूंगा, ऐसा मत कीजिए. क्योंकि आप रास्ते में यात्रा में अटक भी सकते हैं. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के ट्रैवल में, अब इसकी जगह यदि आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं और कहीं कुछ हो गया, कहीं भी छोटे मोटे रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पहाड़ी नीचे आ गई, तो आप बीच में ही अटक सकते हैं. और ऐसा होता है लोगों की, कार में खड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं और लो शुगर हो गया, ऐसा भी हुआ है लोगों में. ऐसा बहुत बार हमने, इवन बूटीबुरी में जब पहले फ्लाईओवर नहीं बना था, रोड बहुत बार ब्लॉक हो जाता, तो एक बार मुझे एक मधुमेही का फोन आया जो बूटीबुरी के थे और नागपुर आ रहे थे. बोले मेरे को खाली पेट आना था इसलिए मैं कार में बैठ गया, ट्रैफिक 4 घंटे का जाम पड़ा हुआ है. तो मेरे को बहुत जोर से हुआ, फिर उतरे उनके घर के लोग,
2: अच्छा,
0: दूसरी कार वालों से उन्हें कुछ लिया खाया और अपना लो शुगर अटैक वहीं के वहीं करेक्ट किया.
2: चीजों का हमें ध्यान,
0: तो हमें अपने खाने का चीज सब बराबर अरेंजमेंट रखना चाहिए. कपड़े कम रखो पर खाने की और दवाइयों का बराबर सब ख्याल रखिए कि वो डबल रहे. ग्लूकोमीटर साथ में रखिए, शूज बता दिया मैंने, और इसके अलावा अपनी ठंडी की जगह है तो ठंडी के इनफ कपड़े होना चाहिए. यदि आप कहीं रेतीली एरिया जा रहे हैं तो वहां पर भी अपने को डिहाइड्रेशन ना हो उसके रखना चाहिए. ग्लूकोज का एक पैकेट अपने साथ में हमेशा रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए.
2: जी जी डॉक्टर, एक कॉल लेते हैं. हेलो हेलो,
1: नमस्कार मैडम.
2: नमस्कार.

0: काही डायबिटीक जे आणखी एक नावं दिले गेले आहेत, जसे डायबिटीक 4, डायबिटीक 5 असलं काहीतरी नावं नामकरण झालेले आहेत का डायबिटीसच्या विषयी?
1: डायबिटीस 5 नामकरण इतक्यात झालेलं आहे, दॅट इज ऑलरेडी प्री एक्झिस्टिंग आहे आपल्याकडे, ज्याला आपण इन्सुलिन रिक्वायरिंग नॉन किटॉटिक डायबिटीस म्हणायचं. त्याचं जुनं नाव आपल्या भारत देशाने पहिल्यांदा दिलं होतं, त्याचं नाव होतं माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीस. दिस नेम वॉज गिवन इन 1980s बाय अवर सिनियर्स. त्याच्यात नाव होते डॉक्टर बी बी त्रिपाठी फ्रॉम कटक, डॉक्टर जी वर्गीस फ्रॉम केरला, अँड वन मोर फ्रॉम ओरिसा. सो देर आर मेनियस पीपल हू हॅव रिअली वर्कड हार्ड इन दिस आय आर डी एम, अँड त्यांनी आताही त्याचे डॉक्टर सिद्धार्थदास नाव म्हणून आहे, ते पण काम त्याच्यावर करता येतं एम आर डी एमवर. आम्ही पण इथे पाहतोय की एक तो कसा आहे, एक टाईप तो बिहेव करतो टाईप वन सारखा, पण तो किटोसिसमध्ये जात नाही.
2: अच्छा.
1: टाईप वन वाले कसे असतात की त्यांनी एक दोन दिवस इन्सुलिन बंद केलं की पटकन डायबिटीक किटोसिस होतं आणि त्यांना कोमामध्ये जाऊ शकतात, पण हे लोक अगदी गरीब परिवाराचे असतात ते टाईप 5 डायबिटीज मधले, अगदी दे आर फ्रॉम द पुअर फॅमिलीज, पुअर सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस, आणि ते गावातले असतात आणि त्यांच्या त्यांना खायला प्यायला खूप बहुतेक इट इज बिकॉज ऑफ दी माल नरिशमेंट, म्हणजे हायपो माल न्यूट्रिशन, त्याच्यामुळे पेनक्रियाज व्यवस्थित डेव्हलप नाही झाला. तर बाय द टाईम दे कम इन 20s अँड 30s, युजली 30s वयात, तेव्हा त्यांना डायबिटीज होतो, एकदम 500, 600, 700 होतात. ते युजली येतात की सर माझा 20 किलो वजन कमी झालं मागच्या 6 महिन्यात किंवा 1 वर्षात, 1 साल से मेरा 15-20 किलो वजन कम हो गया विदाउट एनी रीजन. और 400, 600, 700 शुगर पे आते हैं, HbA1c 17-18 रहता है, इसके बाद भी यूरिन में एसीटोन या ब्लड में कीटोन निगेटिव रहता है.
2: अच्छा.
1: न्यूरोपैथी अक्सर कॉमन रहती है, और इन लोगों का जब सी पेप्टाइड करते तब मालूम पड़ता है कि इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा है शरीर में, और वो लोकल डॉक्टर उन्हें गोली देते रहते हैं, गोलियां काम नहीं करती है. लोकल डॉक्टर को ऐसा है कि 300 शुगर है, 400 शुगर है या 100 शुगर है, वो गोली देने का काम करते हैं. इंसुलिन पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसका डायग्नोसिस भी नहीं करते, उनको लगता है बड़े लोगों का डायबिटीज है ना गोली वाला, छोटे बच्चों का है ना इंसुलिन वाला, ऐसा नहीं होता है. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के डायबिटीज होते हैं. एक मोडी करके भी डायबिटीज होता है, मोडी यानी मैच्योरिटी डायबिटीज ऑफ यंग, ये इसमें जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन रहता है, यानी जैसे लड़की को हुआ यंग एज में, सपोज 18 साल की लड़की आई, थोड़ी सी मोटी है, परिवार में मम्मी को भी है और नानी को भी है.
2: अच्छा,
1: क्या बोला मैंने, बच्ची को है,
2: नानी को,
1: मम्मी को भी है, नानी को भी
2: है,
1: हर पीढ़ी में ऐसा है. पिताजी की बात बात कर रहा हूं, यदि पिताजी का रहा तो फिर लड़का, पिताजी और दादाजी.
2: अच्छा,
1: ऐसे यदि ट्रांजिशन है जेनेटिक तो उसको मोडी बोलते हैं,
2: और इन लोगों को गोली से काम हो जाता है. हेलो
3: हेलो,
2: हाँ नमस्कार.
3: नमस्कार, एक क्वेश्चन है.
2: हाँ विचारा प्रश्न.
3: माझे प्रश्न असा आहे, माझे मिसेस त्याच्या 2 दिवसापूर्वी फास्टिंग सुरू केलं 80 आहे, त्याची आधी केलं होतं तेव्हा 1.5 महिन्यापूर्वी त्यांना 80-85 आले होते.
2: बर,
3: HbA1c जे करतात ती माहिती नाही द्या.
2: आता त्रास काय आहे?
3: जेव्हा ती माहिती एकदा केली होते ते 6.7 येते.
2: ठीक आहे ठीक आहे ठीक
1: आहे. मला वाटते एक यांनी आपल्या डॉक्टरना भेटून मायनर जे आहे ते गोष्ट ते डिस्कस करायला पाहिजे. आपण जे होतो ना ट्रॅव्हल डे गाईडलाईन्स मध्ये, ट्रॅव्हल डे गाईडलाईन्स मध्ये मॅडम एक बहुत इम्पॉर्टंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बाकी शहरों में भी इसे सुनते हैं इस कार्यक्रम को, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक डायबिटीज का आई कार्ड होता है, डायबिटीज आइडेंटिटी कार्ड होता है. हाँ, डायबिटीज आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस आई कार्ड में डायबिटीज आई कार्ड होता है, और उस आई कार्ड की बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी मैं कुछ कुछ बताऊंगा इसकी आपको. तो इस आई कार्ड में एक उसका मधुमेह का फोटो होता है और उसमें लिखा रहता है मुझे डायबिटीज है,
2: अच्छा
1: मैं डायबिटीज की दवाइयाँ रेगुलरली लेता हूँ, यदि मैं असामान्य बिहेवियर कर रहा हूं या मैं असमंजस में हूं, कंफ्यूज्ड हूं या बेहोश हूं, मुझे ग्लूकोज पिला दीजिए या मुझे ग्लूकोज कुछ खाने को दे दीजिए, यदि मैं पूरी तरह से बेहोश हूं तो मुझे निकट के अस्पताल में लेके जाइए, आपकी मदद मेरी जान बचा सकती है. उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है, दूसरे साइड में इंग्लिश में लिखा रहता है.
2: अच्छा,
1: और उसमें फोन नंबर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का लिखा रहता है.
2: अच्छा,
1: आप समझे
2: बहुत अच्छी बात है
1: तो आपके रिलेटिव तो वो रूपा जी का नाम डालेंगे और उनका फोन नंबर सॉरी पूर्वा जी का नंबर डालेंगे और उस मधुमेह का नाम नहीं रहे।

0: फोन नंबर नहीं रहेगा, नाम उनका रहेगा मधुमेही का, पर
1: जी, जी.
0: और इसका इसके पीछे उनका इमरजेंसी उनके डॉक्टर का भी नंबर रहेगा. तो यानी आपको डॉक्टर को डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं, आपके उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को फोन कर सकते हैं यदि आप बेहोश हैं तो. और इससे कई लोगों की जानें बची हैं मैडम
1: बहुत.
0: और उनके कई बार बैग में भी ग्लूकोज वगैरह मिल जाता है, चेक कर लेते हैं तो उससे तुरंत उनको पिला दिया जाता है. और इसमें अक्सर लोग मंदिरों में ऐसा होता है,
1: आप यदि आप
0: तिरुपति, हमारे कुछ मधुमेही तिरुपति में जाते हैं, शिरडी के साईं बाबा जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो वहाँ काफी लंबी 5-5, 6-6 घंटे की लाइन रहती है. वो बेचारे भूखे नहीं रह पाते, खाना पास में नहीं रहा तो तकलीफ होती है. तो उसलिए वो आई कार्ड जब दिखाते हैं तो वहाँ के समिति के लोग भी उनको कहीं ना कहीं मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं. अच्छा, आपको डायबिटीज है क्या? आपके पास आई कार्ड है, प्रूफ है उनके पास, समझे ना?
1: अपने डायबिटीज.
0: तो जिस तरह से आधार कार्ड हमारे हमें आज हमारे भारतीयता का आभास दिलाता है, उसी तरह डायबिटीज आई कार्ड आपको आपके ओनरशिप की याद दिलाता है.
1: जी जरूर. और अपने मधुमेह के प्रति जो जागरूकता है
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: इसमें
0: जी. तो हर मधुमेह के पास उसका आई कार्ड होना जरूरी है, तो वो आप जब ट्रेवल पे जाते हैं तो जरूर से लेके जाइए. जी,
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर आपने बताई है, और इससे बहुत मदद मिलती है.
0: जी, जी,
1: ऐसे
0: जी.
1: जो इमरजेंसी केसेस रहती हैं तो इसमें बहुत मदद हो सकती है.
0: जी, जी.
1: डॉक्टर, आजकल बहुत से युवा पीढ़ी में, जैसे शुरुआत में भी आपको ये क्वेश्चन आया था कि युवा पीढ़ी में ये बढ़ रहा है मधुमेह, और
0: जी,
1: इसके
0: जी.
1: साथ दोस्त भी आते हैं बीपी वगैरह.
0: कल मैं एक होटल में, एक हमारी डायबिटीज की एक मीटिंग थी, करीब 20-25 बच्चे थे, यंग बच्चे थे सब, और उन डॉक्टर्स थे, तो उनके लिए हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे. तो कल ही इस टॉपिक पर बात चली कि आपके आज की तारीख में यदि आप 100 मधुमेहियों का डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसमें से कम 50-60% लोग यंग एज के आ रहे हैं, जिनकी उम्र 20-40 के बीच में है.
1: ये
0: विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ऑफ अवर लाइफ. देखिए, 60 के बाद तो मेंटेनेंस हो जाता
1: है, बहुत कम होते जा रही है
0: एज. तो एज ऑफ डायबिटीज जो एक जमाने में 60 और 65 में आती थी, फिर वो 55 हो गई, 50 हो गई, उसके बाद में अभी 45 हो गई, आज की तारीख में जो 50-60% लोग जो हैं उनका डायग्नोसिस अर्ली एज में हो रहा है. और ये उनकी एकदम प्रोडक्टिव एज होती है कि आपको 35 साल की उम्र में डायबिटीज हो गया, 40 में डायबिटीज हो गया. अभी तो पूरी लाइफ कमाने के लिए, अभी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चों को एडजस्ट करना है, जॉब एस्टेब्लिश होने की है, यानी पूरी तरह से फिक्स होने की है, बिजनेस जो है वो स्टेबल होने का है. यह स्टेज है जिसमें एकदम व्यक्ति एकदम फ्लाई करते रहता है, सडनली डायबिटीज आ जाता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: सबसे पहला मैसेज इन युवाओं को कि डिसअपॉइंट ना हो, डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में ना जाएं. डायबिटीज आपका फ्यूचर अच्छा ही करेगा, खराब करने की संभावना
1: जी,
0: बहुत कम है. सिर्फ ओनरशिप लेना है और जागरूक होना है. और इस टॉपिक पे हम एक आध बार फिर से अच्छे से
1: बात करेंगे. जरूर जरूर. श्रोताओं, आप सुन रहे थे डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय था मधुमेह, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया तज्ञ डॉक्टर सुनील गुप्ता ने. और इस कार्यक्रम के लिए हमारे तकनीकी सहायक थे सचिन कोकणे और सुभाष शास्त्रकार, तथा निर्मिति सहायक थे अतुल साखरकर, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे. कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नागपुर. तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर सुनील गुप्ता के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ. नमस्कार.
0: नमस्कार.
1: श्रोते हो आत्ताच अपन डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नागपुर हा लाइव फोन इन कार्यक्रम ऐकलात. आजचा विषय होता मधुमेह आणि तज्ञ होते डॉक्टर सुनील गुप्ता. हा कार्यक्रम आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती या दोन्ही केंद्रांवरून एकाच वेळी प्रसारित करण्यात आला.

फल टल लगती है इंजन गाड़ी, अरे फल टल लगती है इंजन गाड़ी, तम कुछ कूड़ी टका बेटा बिड़ी गाड़ी, अरे चल चल पता

गबी चिरले को मौज मजा करा अरे गबो गबी चिरले को मौज मजा करा तुम्हें हमार पूजा से गानी मरा अरे हमला न देव।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल।
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का

0: सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है? जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
0: जी
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है, नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है,
0: जी
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
0: जी
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
0: जी
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800-440-5559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हों,

0: पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों

0: के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश

0: और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा

0: वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविन्द्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविन्द्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविन्द्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविन्द्र साहित्य शामिल किया गया है।

अरे अभागे, खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले, रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले।

0: आणि त्यांच्यावर जगणाऱ्या कीटकांवर पक्ष्यांवरही होत असल्याचं दिसून येतं. शास्त्रीय आधारावर शास्त्रज्ञांनी काही झाडांना फुलं त्याच ऋतूत पण लवकर का येतात याबद्दलचं मत संशोधन करून मांडलेलं आहे. निसर्गातल्या एखाद्या गोष्टीचा परिस्थितीचा शास्त्रीय निष्कर्ष हा सततच्या आणि कमीत कमी 8 ते 10 वर्षांच्या किंबहुना जास्त वर्षांच्या निरीक्षणावरून काढणं योग्य ठरेल. ऋतूबदल नैसर्गिक तर आहेच, पण त्याच्या कालावधीत आणि गुणवत्तेमध्ये गेल्या काही वर्षात इतके बदल घडतायत की एक दिवस निसर्गातल्या इतर सजीवांबरोबर माणूस जातीवरही त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. श्रोतेहो, परिसर कार्यक्रमात आज आपण ऋतूबदलांचे संकेत आणि उन्हाळी बहर याविषयी डॉक्टर कांचन गंगा गंधे यांनी लिहिलेल्या माहितीचा चौथा आणि शेवटचा भाग ऐकला. मी प्रसाद कुलकर्णी आज इथेच निरोप घेतो. ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती.
1: परिसर या कार्यक्रमाचं पुन्हा प्रसारण आपण ऐकलं आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून, तसंच AIR मराठी या DTH उपग्रह वाहिनीवरून. दुपारी 2:15 हिंदी बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत.
2: नमस्कार, आकाशवाणीचे दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक. DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया. अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो. IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं.
3: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है. कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी. कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली BJP सरकार शपथ लेगी. BJP के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं. कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे. इसी बैठक में BJP विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा. इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा. कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए.
2: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और NDA शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी. प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी. तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है. सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है. DMK और ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की. ऑल अन्ना DMK पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया. राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी. केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है. कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के

0: आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके

0: न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में

अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
3: आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जलसंधारणाची कामं युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र

0: राष्ट्रीय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सुरीनाम देशे सुरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामं अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः IMF इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
1: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवनचक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन

0: हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालनस्य सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवनचक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्ताराष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयनासीत।
0: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृहे एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
2: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
1: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी, संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता ऐकूया कार्यक्रम स्वस्त भारत। ही पुणे आकाशवाणी केंद्राची निर्मिती आहे।

0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी यासोबतच भावधारा हा कार्यक्रम समाप्त होत आहे. रात्रीचे 9:15 वाजता आहे. यानंतर 9:15 वाजता समाचार संध्या, 9 वाजता News@9, 9:15 स्पॉटलाईट आणि 9:30 करंट अफेअर्स हे कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे. तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की. राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा. भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत. और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची. अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे. कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया. श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे. गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया.
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं. उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है. इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ.
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है.
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. हम सब के लिए बहुत आनंद का. 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है.
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: अंकित मिल गया था.

0: कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO

0: डीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है, इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी। कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों

0: भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कारण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
1: जी,
0: 5000 साल पहले का है। 5000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया। सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर्, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी। मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ईस्वी सन 1400, तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनर्निर्माण किया। ये सोमनाथ की बात है
1: जी।
0: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए। एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमारपाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया। एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों शैव दोनों मिलकर किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया, इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए। 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा, उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी और आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को मुक्ति दिलाई, तब उसी दिन सरदार वल्लभ भाई जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में उन्होंने बड़ी सभा की और बाद में वो वहां से, दिवाली का दिन था, वो सोमनाथ गए। उनके साथ महाराजा जामनगर के दिग्विजय सिंह जी थे, एनवी गाडगिल थे जो मिनिस्टर थे, कैनराल मुंशी थे, ये सभी के सभी लोगों ने देखा और वल्लभ भाई ने देखा कि ये जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा है, किस प्रकार इसकी दशा है, इसका पुनरोद्धार होना चाहिए। तो समुद्र से अंजलि भर पानी लेकर हथेली में उन्होंने संकल्प किया। इससे पहले 1892 में स्वामी विवेकानंद आए थे
1: जी,
0: और उन्होंने ऐसी ही स्थिति में जो सोमनाथ था वहां समाधिस्थ हुए, सामने हिंद महासागर था, और तब उन्होंने सामने, वो कहते हैं वो सबसे पहला उनको दर्शन भारत माता का वो वहां हुआ था।
1: Okay, so we'll continue this conversation trying to understand about the historical significance and how it resonates also with a lot of people in so many ways. But let me bring in the Prime Minister's upcoming visit, the article that he's written just ahead of the visit, and it's quite reflective and personal in tone. So, Ms. Aditi Tandon, the question to you is that this is one of the many visits by the Prime Minister to the Somnath Temple, and in fact this is going to be the second one on the 11th of May this very year. According to you, what do you think the Somnath Temple represents for the Prime Minister, both personally, coming, he's somebody who comes from Gujarat, but also politically?
2: See, Somnath Temple to Prime Minister Modi, as also to all the citizens of the country, basically is a representation of our country's inconquerable spirit and civilizational continuity that has gone on for more than 5,000 years now. It also, you know, sort of, Tina, represents transitioning from the memory of destruction, which we know as Vidhvans, and to national renewal, which we know as Srijan. In fact, Vidhvans and Srijan are the two phrases that Prime Minister has used in his article today as he prepares to return to Somnath to mark the 75th year of the opening of the restored temple. You will recall that it was on May 11, 1951 that then President Rajendra Prasad had gone and opened this historic and majestic restored temple. And there had been issues with respect to, you know, the approval to the then president. Prime Minister Jawaharlal Nehru was not in favor of the head of the state going and attending the inauguration of a temple. Mm-hmm. But as we know, and as also pointed out in the article that Prime Minister Modi has authored today, Somnath is not just architecture or a building or just, you know, a representation of Indian art and symbols of, you know, India's majestic temple architecture. It is much more than that. It is a representation and reflection of our very strong indomitable spirit. We all know that the first recorded attack on Somnath Temple was in 1026 by the Mahmud of Ghazni. And you just mentioned the Somnath Swabhiman Parv, for which Prime Minister had gone to Somnath in January. I still remember for 3 days the nation had commemorated the spirit of resilience and unbroken faith and sort of cultural identity that we associate with the temple of Somnath. And today again, when we read the article that has been authored by the Prime Minister, we find those references. He speaks of how the temple of Somnath was repeatedly, you know, destroyed, and it repeatedly renewed itself. So in a sense, you know, it stands tall as a symbol of

0: भगवान सोम ने मंदिर बनाया, तब से जितने लोग आए, मोहम्मद गिजनी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, अलफ खान आए, मुजफ्फर गुर्जर सुल्तान आए, औरंगजेब आए, मोहम्मद बेगड़ा आया और मोहम्मद गजन भी आए, इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों पर को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। विनाश से निर्माण, मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच, और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा। उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई दैवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है।
1: जी
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए, और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ, तो ये, और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने।
1: जी
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ, और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है। मैं
1: प्रधानमंत्री
0: उदाहरण
1: 11
0: देना
1: मई को
0: चाहता
1: दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने
0: हूँ।
1: जिस तरह से हमें
0: हाँ
1: पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहां शांति होगी या नहीं होगा, वहां युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारतवर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है।
1: जी
0: और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है,
1: जी
0: आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं, तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा
1: बिल्कुल
0: हूं, मैं बोलता भी हूँ,
1: रिसेंट
0: जानता हूँ।
1: टाइम्स एज यू राइटली मेंशन, गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन

0: योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। So the story of Somnath Temple, listeners, is not just about a temple rebuilt in stone. It is about civilization, in fact, that refuses to lose its spirit. So 1,000 years after the first attack and 75 years after its restoration, Somnath continues to stand tall as a reminder that India's strength lies not only in its history, but in its ability to rebuild, to endure, and most importantly, to move forward with confidence. So on that very interesting note, we'll have to wrap up the conversation. Time allows us to take up only that much on the program. So that's it from us, listeners, on this program. You can also listen to our program, Current Affairs, on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए।